सक्री सृष्णदुखाय अचम भव याद जुगाद स्वरूप सुजम भव अबरस्या मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुय तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहावे मरे पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

अपनी प्रतीत आप ही होवे, बहर उसका विश्वास न हुए। जिसकी वस्ता तहा कर रखे, प्रभु की आज्ञा माना माथे, उसके चौगन करे निहार। नानक साहिब सदा दया, रंग पात माया की हित, सर पर होत जाना नियत। बिरख की छाया सिंह रंग लावे, ऊह बिन सह मन पछतावे। जूदी सह सुचालन हार, लपट रहे हो ध्यान अंधार। बटाऊ सिंह जो लावे नीह, ताको हाथ न आवे कीह। मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई, कर कृपा नानका पलय लाई। मिथ्या तन तन कुटम सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया। मिथ्या राज जोवन धन मार, मिथ्या काम क्रोध विकरार। मिथ्या रथ हस्ती असब वस्त्र, मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आप सुपुर करत कुमान। अस्थिर भगत साधगी शरण, नानक जाप जब जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर नंदा सुन, मिथ्या हस्तु पर दर्भ कव फिर है। मिथ्या नेत्र पीखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कोता, मिथ्या मान पर लोल भाव। मिथ्या तान नहीं पर पुकार, मिथ्या बास रेत बकार। बिन बूझे मिथ्या सब पाए, सफल देह नानक हर नाम लाए। बिरथी सागत की आर जा, साच बिना कह हुवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावत ता कदर गंध। बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाय, वेक बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बृथ सब काम, ज्यों कृपन की निरार्थ दाम। तन तन तिय जन जिह काट बस्यो हर नाउ। नानक तक बर बर जाव, रहत अवर कछवर कमावत। मन प्रीत मुखम गण लावत, जानन हर प्रभु प्रवीण। बाहर पीख न काहू पीन, अवर उपदेश अपना कर। आवत जावत जन्मा मरा, जिसके अंतर बसा निरंकार। जिसकी सीख तरा संसार, जो तुम भने तिन प्रभ जाता। नानक कौन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने। अपना किया आप अहमान, आप है आप आप करन वीरा। कैसा दूर जनावत कह बुझावत नीरा। उपाव सियान सकल दे रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जह पावे तह लय लड़ लाय, धान धन अंतर रहे असमाय। सो सेवक जह कृपा करी, निमुख निमुख जब नान करी। सलोका क्रोध अर लो मोह, विंस जय हम वेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद, गुरुदेव अष्टपदी। जह प्रसाद क्षति अमृत खाही, जिस ठाकुर को रख मन वाहे। जी प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको समृत परम गत पावे। जी प्रसाद बस सुख मंदर, तिसै तिहाइ सदा मन अंदर। जी प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरत दस रसना। जी प्रसाद रंग

रचना प्रवरचिव वेदन प्रकार अष्टपदी के कूट हो पुजारी के कूट आचार व्यावहारी के कूट वय तीर्थवासी के कूट वन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तुपी स्रोते कई कोट आत्म त्या अंतर कई कोट कवका विचार कई कोट अवतन नव त्यावनान कर्तिकांदना पाव कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिघातन कोर कई कोट पर दर्भ कव हिर है कई कोट पर दुख न कर कई कोट माया श्रम वाह कई कोट पर देह प्रमाहि जेत जेत लाभ तित लग जेत जेत लाभ हो तेत तेत लगना नान करते कि जान करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी के कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर्व्यापाय के कोट पाथर बिरख न पजाय कई कोट पावन पाणी बैसंद्र कई कोट दीस मंडल कई कोट शशिर सूर नखिया तर कई कोट दियो दान इंद्र सिर शतर सकल समग्री अपना सूत तार नानक जेह जेह पावे तेस तेस निस्तार कई कोट राजस तमस सातक कई कोट वेद प्राण समृत सासत कई कोट की रतन समोद कई कुंडन प्रकार जंद कई कोट की चर जीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाक किनर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगा सब तिनेरा सब सुते दू नानक बलिप तरह अपार पूर कई कोट पातार के वास कई कोट नरक स्वर्ग निवास कई कोट जन्म जीव हमर है कई कोट बजोनी फिर कई कोट बैठते खाही कई कोट काल थक पाही कई कोट की यतनबंद कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा दह दह रख नानक साहब के प्रभु का थी कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभु कहु जयंती आत्म मह पार ब्रह्म लहंती कई कोट दर्शन प्रभु आस तिन कमिले प्रभ अमरास कई कोट मांग सतसंग पार ब्रह्म दंडा का रंग जिन कहु आप सुप्रसन्न नानक तिय जान सदा तन तन कई कोट खंड यर खंड कई कोट।

प्रसंग से खुदराय नन खर गुण गावष्ट पद साधगुर सिख कारा व्रत पार सेवक गुरु सदा दयाल सिख के गौर दौर मत मार हरा गुरु वचन हर नाम उचरा सतगुर सिख के बंधन काट गुरु का सिख विकार दे आटा सतगुर सिख को नाम तान दे गुरु का सिख उड़ भागी हे सतगुर सिख का हालत बल्द सवार नानु सतगुर सिख का जी अनाल सुमार गुरु का गृह सेवक जो रह गुरु की आज्ञा मन मह सह आव सकौ कर काश न जनावे हर हन अवरत सत्य आवे मन विचार सतगुर के पास ते सेवक की कार्य रह सेवा कर दो निह कामी उसका होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जैसा क्रिय नानक सो सेवक गुरु की मैथिली बीस विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान सो सात गुरु जिस हर नाव अनक बैर गुर का बर जाय सर्व निधान जी का दाता आठ पहर बार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन महपार ब्रह्म जी कहे आव नहीं कहे परम सह सो सियान पलया न जाइय नानक ऐसा गुरु बिट पागी पाई है सफल दर्शन पीखत पनीत परसत चरण का निर्मल रीत पीठ संग राम कुन रविपार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन कर्ण आघनी मन संतोख है तुम पतिया ने पूरा गुरा की और जा का मंत्र अमृत दृष्ट पीखा वे संत गुण बेअंत क्यों तरह पाए नानक जिह पावे तह गई मलाय जिह भाई कुछ तनेक सतपुरुष पूर्ण बबी कह बोल न पहुचत प्राणी अग मैं गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ताकि क्यों कने न पाई जनक भगत बंधन नियुत करा चरण कमल हृदय सिमर सतगुर हरि सतगुर अपने नानक जय प्रसाद ऐसा प्रभ जपनी हो हर रास पावे जन को अमृत पीवे अमृत सोहे उस पुरख।

दीपक प्रकाश नायन परम वोह दुख तहत विनाश तपत महिष्ठांड वरताई अनंत भया दुख नाठी पाए जन्म वरन के मिटे आदेश साधु के पूर्ण अपदेश पा चुका निरपा हुए बस सकल व्यात मन देख है नसे जिसका साथ कृपा तार सा संग जब नाम मरारी थित पाई चुके प्रम का मन सुन नायन हर हर जा श्रम निर्गुण आय सरगुण व्योहि कला तार जिन सक्रिय मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपि पाए हर बिन दूजा नाहीं कोय सर्वंदर अंतरी को सोये ओतपोत रव्या रूप रंग पाए प्रकाश साधक संग राच रचना अपनी काल तारी अनुकुबा नानक बल हरि श्लोक साधना चाल बिन भजन विख्या सगरी सार हर हर नाम कुमार नानक हो तन सार अष्टपदी

कनु संचहु वह भगवंत। संत जनक निर्मल मंदी का सराखु मन वाहि सर्व रुग्ना निवट जाहि जिस तन का उचार कुंट उठता वे सो तन हर शिवा ति उपावन जिस सो कंडत बांछम वीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा का करह परिकरण सा शोभा बज हर की शरण यान क्यो पावी रोग न जाय रोग मिट हर अवखत लाय सर्व निदान में हर नाम निदान जप नारायण दर्ग प्रवान मन प्रबोध हर कह नाय दह दे तब तब ठाय ताको विघ्न लागो कोई जा कर दह बस हर सोए कल ताति ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण हो आस भगत पाया तुम प्रकाश तीत कर जाय बस अबनासी कह नान काटी जम फासी तात विचार कह जन साचा जन्म मर सुखा चुका चा आवा गौन बेटा प्रभु शिवा त्याग शरण कर देव यो रत्न जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अन के पावन छूट नारि सिम सा सतबीर विचार हर की भगत कर मन लाए मन पंचत नान फल पाए संग न चार सीरा तना तू क्या दुपटावै मूर्ख मन सतमीत कुटाम भर बनता जंते कहो हो तुम कम सनाथा राज रंग माय व्यवस्था जंते कहो हो कम छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डम फै झूठ पा सारी जिंदी दिह बुझा ना बेगा ना नाम बसा नानु पुछता ना गुर की बात तू लिख आने भगत बिना बडू बेस्यान हर की भगत करह मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राख मन वाही जन्म जन्म के गिर विख जाही आप जप हो अवरा नाम जो पाव हो सुनत कहत रहत गात पाव हो सार पूत सातर गुना सहज सुभाई नान गुन गाय गुन गाव तिरी उतर समैड बिन सजा हो मैं बिखैल उही अचिंत बस सुखनार सास ग्रास हर नाम संभाग षाढ़ श्याम सगरी बना सा संग पाव सज दन हर कुंजी संज कर व्यवहारी हर सुख दर गज जयकार सर्व निरंतरी को देख कह नानक जाग मस्तक लिखे को जापि को सलाहि सिमरि को मनाहि कसके गुण गाव अनंत मानता जापि को भगवंति को एक एक हरिया पूर्ण पूरहि प्रव्याप अनक विस्तार एक दे भयक आराध प्राशत गए मंत्र अंतरी प्रव्रत गुरु प्रसाद नानक की कजात श्लोक फिरत फिरत प्रभाया पर्यत तो शरण आय नानक की प्रवीनती अपनी भक्ति लाय अष्टपति जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा दिव हर नाम साध जनक मांगा तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गायव सा सा प्रभु तुम्हें त्याव चरण कम सिंह लाग प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नीत कोटि को आधार नानक मंगन प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख हर पाव बिरला कुए जिन चाख्य से जान त्रिपता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर परि प्रीम रह रंग बुझा चाव साध घंग परि सन्नायन सब त्याग अंतर प्रकाश आंद निवला गुड बागी जपया प्रभ सोज नानक नाम रति सुख होय सेवक मन सा पूरी भय साधु कृति निर्मल मात लय जन का प्रभ हुए उदयार सेवक न सदा ने हाल बंधन काड मुक्त जन भया जन्म वरण दुख कम गया ईश पुण्य श्रद्धा सा पूरी राव रह साध संग हजूरी जिसका साथ लिया मिला नानु भक्ति नाम समाय सुखों बिसरा जि काल न पाना सुखों बिसरा जि किया जाने सुखों बिसरा जन सब कह दिया सुखों बिसरा जि जीवन जिया सुखों बिसरा जि अगन महाराख है गुरु प्रसाद को बिरला राख है सुखों बिसरा जि विखति काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरु पूरा ताते है बुझाया प्रभु अपना नानु जानते आया साजन संत करो यो का मान त्याग जप हर नाम

जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे,

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे घाट घड़ी।

पवित्रै पृथ्वी से आदि से अदृश्य अकृश्य भगवती शांतवै प्रसाद कस्ते के आशिज देसै के आपिज पिसै के अगंज करमै के अभंज भरमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत वरनै के विभूत करनै के राजन प्रवाहै के धर्मंग तुझा है के अशोक वरनै के सर्वा अवहरनै के जगतं कृति हैं के शतरंग क्षत्रि हैं।

फिर आज है निरुक्त स्वरूप हैं, तिन मुक्त विभूत हैं, परभुक्त प्रवाह हैं, सुजुक्त सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अभेदी अनूप हैं, समस्त उपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्त सुलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिवर्गुण त्रिवादे, अगंजे अगाधे, सुभंग सर्भागे, सुसर्वा अनुरागे, त्रिपुक्त स्वरूप हैं, अशिज हैं, अशूत हैं।

तजमाल हैं कि अचलंग प्रकाश हैं, कि मितो सुभाष हैं, कि अजब स्वरूप हैं, कि मितो विभूत हैं, कि मितो प्रसाह हैं, कि आत्म प्रवाह हैं, कि अचलंग अनंग हैं, कि अमितो अपंग हैं, मद पार्षंत व प्रसाद।

सगरी शिष्य दखाय अचम भव आद जुगाद स्वरूप सुजम भव अबरसा मेरी तुम करो सिख उबार असिख सुंगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुहि तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके

पई संबल सत्रह सस भणिजय अर्ध सस पुन तीन कहि जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गह जबते तुमरे तबते कुआं अखदरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र बेद।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैफंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला।

प्रभु को सिमरे सदा बनासी। सिमरन ते लागे जनाब दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी। प्रभु को सिम

भाग प्रभु के सिमरन कारज पूरे प्रभु के सिमरन कभू न चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन

नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना के बर्तन नाम, सन जना कह मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम द्रेजन कोट। हर

सीधे है। जय प्रसाद तरु पर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संघर्ष है। जय प्रसाद पीवे शीतल जल्ला, सुखदाई पवन पाव कमला। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग

पतंजाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण बिखोट गवावे एक बिना दे दस पीहिर ले तो मूढ़ा कहु का करे जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा ताको की जय सत नमस्कार।

अष्टपदी जय प्रसाद क्षति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावहे। जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन।

उठत बैठत सत सहते आई त सहते आए जो एक लखे इहां उहां नानक तेरी रखे जय प्रसाद करह पुन बहुदान मनाड़ पर कर तिसका त्या।

अष्टपदी सात के संग में पूजल हो सात संग मल सगली खो सात के संग मिटे अभिमान सात के संग प्रगटे सुज्ञान सात के संग बुझे प्रभ नेरा सात संग सबोत निभेरा सात के संग पाए नाम रत्न सात के संग एक उप

साथ के संग सदा पर फुल है, साथ के संग आवे बस पंचा, साथ संग अमृत रस पुंजा। साथ संग हुए सब की रेन, साथ के संग मनोहर बैन, साथ के संग न कतहु तवे, साथ संग अस्तित्व मन पावे, साथ के संग माया ते भिन्न, साथ संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, साथ संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत, साथ संग किसियो नहीं बैर, साथ के संग ना बिगा पैर, साथ के संग ना ही को

साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलु खत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछड़त मेला, जो इच्छे सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कट कट डीठा, साध संग भया।

जग जीवै हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे। वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सुखम जानै अस्थूल चहो वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्प को ज्ञान जो वरना में जपै को नाम जो

तिस मिलै तिस लिख्या तुन करम। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै।

0: संत के दुखन अर्जा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुट्टै। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक मह पाए। संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के अति को रखे न कोए, संत के दुखन धान प्रष्ट होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भीतर है। संत के दुखन ते मुख होवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जुन पाए, संत के दुखन तरगत जुन किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब कुछ हलै। संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए।

की कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सत बलिहारी सतगुर अपने, नानक इस प्रसाद ऐसा पर